और न अंधों को गुमराही से निकाल कर रास्ता दिखा सकते हो। तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और वो फरमा बरदार हो जाते हैं।

और जब उनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बयान कर देगा, इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे।

क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि उसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया है कि इसमें काम करें, बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं।

0: और जिस रोज सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों और जो जमीन में हैं सब घबरा उठेंगे, मगर वो जिसे खुदा चाहे और सब उसके पास आजिज होकर चले आएंगे।
1: وَتَوَلْ جِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ।
0: اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں, मगर वो उस रोज इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। ये खुदा की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया, बेशक वो तुम्हारे सब अफाल से बाखबर है।
1: मन जा बिल हसनति फलहू खैरुम मिन्हा वहुम मिन फज़ई यौमइज़िन आमिनून।
0: जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला तैयार है, और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे।

और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे। तुमको तो उन्हीं आमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे हो।

0: मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है, और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार मुझे जालिम लोगों से नजात दे।
1: وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ।
0: और जब मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए।
1: वलम

0: मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, उनमें का एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है, सो मुझे खौफ है कि वो कहीं मुझको मार न डाले।
1: وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ

उन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं।

0: और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने उनको हरम में जो अमन का मकाम है जगह नहीं दी, जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं, और ये रिस्क हमारी तरफ से है लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते।
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَةً

क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो ख्याल ये करते हैं बुरा है।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: फैकल्टी आज से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसन अब्बास और आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस से है। मैं बात कर रहा हूं सर उमर शौर की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
3: वालेकुम सलाम बेटा, आई एम फाइन, आप बताएं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज की फैकल्टी को ज्वाइन आपने किस तरह से किया और क्या है आपका बैकग्राउंड?
3: जी मैं फिलहाल जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर प्रिंसिपल लेक्चरर सर्व कर रहा हूँ।
2: माशाल्लाह।
3: I'm rendering my services। और जहाँ तक दर्स व तदरीस के पेशे से मुंसलिक होने का ताल्लुक है तो मैंने अपना जो ये तालीमी सफर है मैं अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ, बेशक के मैं पढ़ाने से मुंसलिक हूँ, वो 2008 से स्टार्ट किया।
2: 2008 से।
3: और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लाहौर की मैं पढ़ाता रहा हूँ, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, UMT, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया।
2: खासा एक एक्सपीरियंस होगा
3: जी। ये माजी में मैं इन जो है तालीमी इदारों से मुंसलिक रहा हूँ और मेरी एक्सपर्टीज जो है वो दो डोमेन्स में है, एक फिलोसफी के अंदर है, दूसरा मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर। तो अब तकरीबन जो है मेरा टोटल जो तजर्बा है वो तकरीबन 15-16 साल का हो चुका है और 15-16 साल से मैं दरस व तदरीस के पेशे से मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। UCP का ताल्लुक भी मेरा बहुत पुराना है, मैं यहाँ का एलुमिनाई भी रहा हूँ और 2010 से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ विजिटिंग कैपेसिटी।
2: सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यूसीपी में पढ़ाने के दौरान?
3: यूसीपी अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राइवेट और निजी इदारों के अंदर ये अपना एक नाम रखता है, एक मुकाम रखता है और इसमें बहुत सारे ऐसे मुस्बत पहलू हैं जिसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, खासकर फैसिलिटीज के लिहाज से, स्टूडेंट के लिहाज से। माई सेल्फ इज अ स्टूडेंट वे बैक इन 2005-08 जब मैंने MBA यहाँ से किया और उसके बाद फिर
2: MBA से यूसीपी
3: जी, और फिर जब मैंने इवन MSP अपना यहाँ से कंप्लीट किया मैनेजमेंट साइंसेस में। तो यूसीपी अपनी जो है फैसिलिटीज और जो प्रो स्टूडेंट पॉलिसीज के स्टूडेंट बॉडी को फैसिलिटेट करने के लिहाज से ये अपने आप में एक नाम है और इसी तरह से क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस करने में भी इसका कोई दूसरा सानी नहीं नजर आता, खासकर निजी अदारों के अंदर। और इवन अगर मैं आपको बताऊं कि जो पब्लिक अदारे हैं उसके अंदर भी इनका अगर हम यूसीपी का मुवाजना करें तो इनका तालीमी मयार जो है जो ये स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इनकी ओवरऑल फैकल्टी है, जो इनकी ओवरऑल फैसिलिटीज हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर रियली अनमैच्ड, वो वाकई काबिले जिक्र है। और यानी क्वालिटी एजुकेशन और प्राइस वैल्यू ऑफ मनी
2: तो है,
3: ये चीज मिलती है और उसका एक जो है नतीजतन हम यहाँ बैठे हुए हैं और स्टूडेंट और एक प्रोग्राम कर रहे हैं
2: जिसे
3: आप ये देखें कि आपको इवन मार्केट में भी जाएंगे तो हर तीसरा चौथा बच्चा यूसीपी के आपको
2: नो डाउट सर
3: लोगों से मिलेगा। इसका मतलब देखें कि मार्केट पेनिट्रेशन कितनी जबरदस्त है इनकी, तो अगर क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चे जो है इनके बरसरे रोजगार है और मार्केट में इनका एक माशाल्लाह नाम है।
2: सर यूसीपी अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा भी पॉलिश करती होती है डिफरेंट स्किल्स में और डिफरेंट फैकल्टी से भी,
3: नो डाउट।
2: तो सर मेरा पहला सवाल है आपसे जो कि मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि फलसफा क्या है और उसकी तालीम क्यों जरूरी है? आपको लगता है कि फलसफा की तालीम लेना जरूरी है इस दौर में जो कि एक डिजिटल मीडिया वर्ल्ड है?
3: देखिए बेटा बात यह है कि फलसफे की तालीम नागजीर है, इट इज समथिंग विच इज इंडिस्पेंसिबल। फलसफा आपको बेसिक प्रोवाइड करता है जिंदगी की। अगर आप फलसफे को एकेडेमिक डिसिप्लिन के तौर पे अगर हम 2 मिनट के लिए समझें कि इस सब्जेक्ट को हम रख दें, जो कि आम फहम लोगों को यही लगता है जो कि अभी आपका सवाल है कि पता नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत रिडंडेंट है, बहुत इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है, आज की दुनिया में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी क्या तालीमी ज़रूरी है? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप किसी चीज़ की ABC को ही ख़त्म कर दें तो उसकी ABC को ख़त्म किया जा सकता है? नहीं। सवाल आंसर होगा कि आपके बेसिक्स को तो नहीं खत्म कर सकते।
2: बिल्कुल।
3: तो जो सोच के फंडामेंटल्स हैं जो आपकी थॉट के, अगर उसमें से फलसफा नहीं होगा, उसकी बुनियाद फलसफियाना स्लूप के ऊपर नहीं जिसे कहते हैं इरेक्ट की जाएगी, تو آپ کی زندگی آپ ایسے ہی سمجھیں کہ آپ کی زندگی ایک وائلڈ گوس چیس کے مترادف ہوگی، یعنی کہ بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی جو ایگزسٹنس ہے، جو آپ کا وجود ہے، وہ اینیمل لیول کی ایگزسٹنس آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ فلسفی اکیڈیمکلی از بینگ ٹریٹڈ ایز مدر آف نالج. اس کو ام العلوم کہا جاتا ہے، ام العلوم مدر آف نالج جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ فلسفہ خیالات، فلسفے کی ابتدا انسانی تجسس سے ہوتی ہے. اب انسانی تجسس کیا آج کل ختم ہو گیا
2: سر؟ اسے خیالات کا مجموعہ بھی کہا جا سکتا ہے.
3: خیالات کا مجموعہ آپ ہزاروں سال پہلے دیکھ لیں، فنڈامنٹل پرابلمز انسان کی وہی ہیں جو آج بھی ہیں. موت کا المیہ، زندگی، ماضی کے پچھتاوے، مستقبل کے اندیشے، ان میں آپ کی پوری زندگی گھری ہوئی ہے. انسان، دکھ، بیماری، ٹریجڈی، وہی المیہ جو انسان کی زندگی کو ہزاروں سال سے گھیرے ہوئے، وہ المیہ انسان کا آج بھی ہے. تو ان المیوں کا جواب فلسفہ دیتا ہے انسان کو. انسان کی جو مقصدیت ہے انسان کی زندگی کی، اس کو انسان سے روشناس کراتا ہے، وہ ہے فلسفے کا علم. تو فلسفے کا علم انسان کو بیسیکلی عقل بالغ، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ میچور انسان، کسی بھی آپ پروفیشن کا حصہ بنے، A mature person is supposed to be likely welcomed. ٹھیک ہے، اس کو پسند کیا جاتا ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کی جو تھاٹ کی میچورٹی ہے، اس سے وہ ایک معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکتا ہے. تو اس کی بیسک بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ نے فلسفہ پڑھا ہوا ہے، اپنے علمی لحاظ سے آپ کی سوچ کے اندر ایک بلوغت پائی جاتی ہے، آپ چیزوں کو ہینڈل اس میچورٹی سے کرتے ہیں، اس کا بہت حد تک تعلق آپ کے اکیڈیمکس کے ساتھ ہے، اور اس میں فلسفے کا سبجیکٹ ناگزیر ہے. بے شک یہ فار دا ٹائم بینگ آپ کو کوئی ایک دم سے پیسہ کمانے کا وہ نہیں ذریعہ بتا دیتا، لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں دوبارہ اس بات پہ تدبر کرنی پڑے گی، کیا انسانی زندگی اور انسانی تعلیم کا صرف مقصد پیسہ کمانا ہی ہے؟ آپ کسی بھی دنیا کے خطے میں اگر یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا صرف تعلیم اور علم کا مقصد پیسہ کمانا ہے، تو آپ کو ایک سیریس جواب کی صورت میں یہ ملے گا کہ بالکل نہیں، بلکہ کیا ہے، ایک اچھے انسان کی پرورش، اور ایک انسان کو معاشرے میں ایک فعال کردار نبھانا چاہیے، اور اس کی بنیاد کے لیے فلسفے کی تعلیم انتہائی ضروری ہے.
2: سر میں آپ کے بات سے بالکل ایگری ہوں، ایگری کر بھی رہا ہوں، لیکن میں

0: लोग एब्जेक्ट पावर्टी का हिस्सा हैं, ठीक है, कई लोगों को बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल रही, पीपल आर रियली टॉटरिंग फॉर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। तो ये तमाम चीजें जो हालात और वाकयात हैं, ये इंसान के अंदर एक थॉट डेवलप करती है,
1: गहरा असर, मतलब,
0: और यही गहरा असर फलसफे की इब्तिदा है मेरा, यही चीजें एकेडमिकली फलसफा इन्हीं चीजों की तलाश करता है, इन्हीं सवालात, फलसफे के अंदर बहुत सारे सवालात हैं और बहुत कम जवाबात हैं।
1: जी,
0: आप देखें, आप यहाँ पर बैठे हुए, इसकी हम एक तशबीह जोड़ देते हैं, हम एक अच्छी एनवायरनमेंट में बैठ के आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ,
1: बिल्कुल
0: बैठे बैठे हमारे सामने फलस्तीन और पलस्तीन की एग्जांपल है, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया गाजा, वो भी बिल्कुल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में तमाम फैसिलिटीज के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। तो यकायक जब इंसान के अंदर एक जिंदगी में उतार और चढ़ाव आता है, तो ये तमाम चीजें जो दुनिया के अंदर हमारे सामने गिर्दो नवा में मौजूद है, ये हमारे अंदर एक सोच की इब्तिदा करती है, या हमारे अंदर एक सोच पैदा करती
1: है, हम इसे कहते हैं डेवलपिंग ऑफ न्यू थिंग्स।
0: जी, और यही सोच फलसफा है, और इन सोच के जरिए से उन अद्भुत हकीकतों का, उन मुश्किल और पेचीदा मसाइल का हल तलाश करना फलसफा है। फलसफे के मैं मसाइल आपको बता भी देता हूँ क्या है। जब आपके अंदर सोच आती है तो आपको पता चलता है जो मैं इल्म पढ़ रहा हूँ उसकी बुनियाद क्या है, जो इल्म है वो ठीक भी है या नहीं, मेरी वजूद की अपनी हकीकत क्या है, और सबसे बड़ी बात, जिस चीज की मैं परस्तिश करता हूँ, जिस चीज की मैं परस्तिश करता हूँ उसका अपना क्या वजूद है, क्या मुझे उसकी परस्तिश करनी भी चाहिए या नहीं, क्या वो मौजूद है या नहीं, ये तमाम सोच और ये तमाम सवाल इंसानी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। फलसफा इन्हीं चीजों की एकेडमिकली आंसर हमें देने की कोशिश करता है।
1: जी ठीक है सर, दूसरे सवाल की तरफ जानब मैं जाऊंगा कि सर आपको क्या लगता है कि फलसफा और मजहब ये दोनों मिलकर माशरे में कोई हमांगी पैदा कर सकते हैं?
0: जी, ये बहुत ही आपने अच्छा और एक गहरा सवाल किया है, क्योंकि अवाम उन्नास के अंदर एक चीज पाई जाती है, खासकर हमारे माहौल के अंदर, कि शायद फलसफा आपको लादीनियत की तरफ ले जाता है, फलसफा आपको मजहब से बेगाना कर
1: देता है। सर, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो फलसफा पढ़ के एथिज्म की तरफ जा रहे हैं, एथिस्ट बन चुके हैं।
0: बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, ऐसा है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप अपने इल्म के आगे कहां पर बैरियर लगा देते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फलसफे का मकसद भी हकीकत की तलाश और जस्तजू है, मजहब का मकसद भी यही है। हाँ, दोनों की थोड़ा सा तरीकेकार और मेथड में फर्क है। मजहब एक हद तक अक्ल का जरूर सहारा लेता है और उसके बाद ईमान की बात करता है,
1: बेशक,
0: और उसके बाद ईमान की बात करता है। फलसफा भी अक्ल और मुशाहदे की बात करता है, लेकिन इसका टोटल ऑर्बिट अक्ल और मुशाहदे के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि अक्ल और मुशाहदे की अपनी लिमिटेशंस हैं, इंसानी अक्ल और इंसानी मुशाहदे की भी अपनी लिमिटेशन है, और इस बात को भी किसी मजहबी बंदे ने हाईलाइट नहीं किया, फलसफियों ने ही हाईलाइट किया। आपकी अकल एक हद से ज्यादा चीजों को सोच नहीं सकती।
1: सर, फिर क्यों लोग अपने अकल पर काबू रखते हुए मतलब ऐसे आगे वेज की तरफ चले जाते हैं जिसका,
0: मुझे ये लगता है मेरी अपनी दानस के अंदर ये बात है कि लोगों की कम इल्मी है, लोग जब
1: शऊर कम है,
0: शऊर कम है, और फिर दूसरी बात यह कि इंसान का एक अपना कल्बी रुझान भी होता है। अगर आपने पहले ही से कुछ चीजें सोच रखी हैं कि मेरा एक रुझान है लादीनियत की तरफ, तो आप वो तमाम हकायक को उन चीजों के साथ जोड़ेंगे जो वाकई आपको लादीन बना देगी, जो आपको एथिज्म की तरफ लेके जाएगी। मैंने आपको फिर बताया कल्बी रुझान, हकायक कुछ और होते हैं अक्सर जो खारिज में हकायक पाए जाते हैं, और एक इंसान का कल्बी रुझान भी है। इंसान के साथ अलमिया ये है कि जिस तरफ वो एक कल्बी रुझान रखता है, वो हकायक को उस अपने कल्बी रुझान के साथ जोड़ने की कोशिश करता है,
1: उसके मुताबिक डाल जाता है,
0: उसके मुताबिक। तो अगर एक बंदे का पहले ही मजहब बेजारी तबीयत है, वो मजहब को पसंद नहीं करता, तो वो सारे वो हकायक जोड़ने की कोशिश करेगा जो इससे वो ये प्रूव करने की कोशिश करेगा शायद मजहब नामी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती,
1: मजहब से जुदा।
0: ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें देखने की जरूरत है। हमें एक न्यूट्रल एस्पेक्ट लेकर, हमें अपने एक मोतदिल रवैया रख के चीजों को समझने की जरूरत है, और फलसफा आपको बहुत हद तक वो जहन की और वो सोच की बलूगत बख्शता है, आपके अंदर वुस्सत कल्ब पैदा करता है, जिससे आप तदब्बर कंपोयर, जो हमारे माशरे में खासकर तहम्मुल और बुर्दबारी का बहुत फकदान पाया जाता है, हम बात कम करते हैं और झगड़ते ज्यादा, हमें गुफ्तगू का भी मयार नहीं पता कि हमें गुफ्तगू कैसे करनी। आज के माशरे में सबसे दूसरा मुश्किल काम गुफ्तगू है, तो गुफ्तगु कैसे करनी है, गुफ्तगु के आदाब क्या है। फलसफे की एक बहुत बड़ी ब्रांच इखलाकियात है। अब मुझे बताएं, अगर एक माशरा बगैर इखलाकियात के हो तो वो माशरा बिल्कुल, हम उसे ये कह सकते हैं कि वो जानवरों का माशरा है। तो किस हद तक जरूरी है, क्योंकि फलसफा आपको इखलाकियात सिखाता है।
1: लिसनर्स, इसी के साथ हम जाते हैं एक ब्रेक पे,

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

0: सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों को जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो है फातिमा अहमद की एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में। और ऑब्वियसली जो मेरी आवाज़ पहचान लेते हैं उनको तो भाई मैं कहती हूँ कि यार आप लोगों को सल्यूट है। लाइक लिटरली समटाइम्स आई लिसन टू माई ओन वॉइस और मैं कहती हूँ कि यार ये क्या है, ये क्यों है लेकिन है तो सही। और फिर जब है तो फिर इसका इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और आज हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, अब पता क्या मज़े की बात ये है, आज हम लोग जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो एक मतलब के ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके बगैर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी म्यूजिकल इंडस्ट्री जो है ना वो इनकम्प्लीट है। लाइक अगर आप नाम लेना शुरू करो उनके, पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज इतने सारे हैं, ये भी हैं इंडस्ट्री में, ये वाले आर्टिस्ट हैं, ऐसे म्यूजिशियंस हैं, ऐसे सिंगर्स हैं, लेकिन वो वाले जो आर्टिस्ट हैं ना जिनका मैं जिक्र करूँगी आज बेसिकली, वो एक ऐसे हैं कि जिनके बगैर जो है ना इट्स वो बात है कि इनकम्प्लीट है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री। हम लोग जो हैं जितनी भी कोशिश करें या हम लोग किसी को भी कहने की कोशिश करें कि यार इसकी वजह से हमारी म्यूजिकल इंडस्ट्रीज की वजह से, लेकिन ये वाला जो नाम है इसके बगैर लिटरली लाइक आई हैव नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब के एक्चुअल में यही आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान म्यूजिकल इंडस्ट्री का नाम जेन्युइन रोशन किया है। हमेशा की तरह ड्रम रोल्स के साथ मैं बताऊंगी कि आज हम किस आर्टिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक मेरी तरफ से फेक ड्रम रोल्स एंड द नेम इज आतिफ असलम। और हम लोग जो है आज आतिफ असलम को डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे पता है कि आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि जब वही बात है कि जब मैं बता रही हूँ कि ऐसा आर्टिस्ट है जिसके बगैर इंडस्ट्री, म्यूजिकल इंडस्ट्री जो है वो इनकम्प्लीट है, तो वो डेफिनेटली आतिफ असलम ही होंगे। तो इस तरह करते हैं, आतिफ असलम के मतलब के उनको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के व्यूज़ जानना चाहूँगी कि आप लोगों को आतिफ असलम कैसे लगते हैं। आप लोगों को ऑब्वियसली पसंद ऑलमोस्ट हर किसी को होता है और आतिफ असलम के गाने हर तरह, हर वैरायटी के गाने होते हैं, तो इसलिए हर किसी को कुछ ना कुछ जो है पसंद ज़रूर आता है आतिफ असलम के म्यूज़िक से। और कुछ ना कुछ लिंक हर कोई कर पाता है, कोई ना कोई म्यूज़िक या कोई ना कोई ऐसा गाना होता है जिसको बुरा भी लगता होना एक आर्टिस्ट, लेकिन उसका कोई ना कोई एक ऐसा गाना हमेशा आ जाता है या कोई ऐसा एक परफॉर्मेंस लाजमी आती है कि आप जो हो फिर मजबूर हो कि आप उस परफॉर्मेंस को पसंद करते हो। तो आतिफ असलम के बारे में आप अपने व्यूज़ बताएं, आप लोगों को आतिफ असलम कैसा लगता है और आतिफ असलम की कोई ख़ास परफॉर्मेंस या कोई ऐसी कोई ख़ास होती है ना, कोई ख़ास बात होती है, कोई किसी की नेचर की बात होती है, किसी का लाइक ऑब्वियसली हर किसी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें पसंद आते हैं। तो आप लोगों को आतिफ असलम की कौन सी बात जो है वो पसंद आई है, या आप लोगों को कौन सी आतिफ असलम की कोई ऐसा गाना जो आप लोगों को पसंद आया हो, या आतिफ असलम के लाइक नेचर में कोई ऐसी बात हो, मैं भी ऑब्वियसली आप लोगों से शेयर करूंगी जो मुझे आइडियाज़ लगते हैं आतिफ असलम से रेलेवेंट, जो मुझे बहुत पसंद है या जो जिसकी वजह से वो मेरी नज़रों में स्टैंड आउट करते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसका जिक्र करूंगी आपके साथ। लेकिन उससे पहले हम इस तरह करते हैं कि हम लोग एक म्यूज़िकल ब्रेक पर चलते हैं, आतिफ असलम का एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे विद मोर डिटेल्स एंड मोर क्वेश्चन आंसर सेशन।

जिन जिनको पता है तो उनको तो मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऑब्वियसली देखते रहते हैं आतिफ असलम को या फिर जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उनको भी पता होगा, लेकिन आतिफ असलम ने एक्टिंग भी की है. आतिफ असलम ने पाकिस्तानी फिल्म एक आई थी बोल के नाम से, उसमें आतिफ असलम ने एक्टिंग भी की थी. तो इज़न्ट लाइक इट्स समथिंग बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी हटके के यू नो एक सिंगर से यू डोंट रियली एक्सपेक्ट दैट मच के एक सिंगर जो है वो इस तरह से हर कैटेगरी में ऑफ लाइफ जो है वो एक्सपोजर बेसिकली हासिल करेगा. और आतिफ असलम ने एक्टिंग करके वो एक्सपीरियंस भी किया हुआ, तो दैट्स वेरी नाइस. उसके अलावा हम जिस तरह से जानते हैं कि ही हैज़ रिकॉर्डेड बहुत सारे ऐसे गाने जो लिटरली होते हैं ना कि टॉप नॉच होते हैं, लाइक उससे चार्ट टॉपर्स होते हैं बेसिकली. इट स्टेज एंड पीपल ऑलवेज रिमेंबर समबडी जिसने इतने अच्छे गाने गाए कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट हर किसी के रहे. उसके अलावा इनके मज़े की बात यह है कि ही इज़ नोन एज बेसिकली इनकी जो वोकल्स हैं वो उनकी टेक्निक या जिस तरीके से वो गाते हैं या जिस तरीके से उनकी एक वो पहचान है बेसिकली आतिफ असलम की आवाज़ की, उस टेक्निक को आतिफ असलम ने बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने उसको खूबसूरत या उसको शार्पन आउट किया है. हम लोग बात करें आतिफ असलम की तो बेसिकली ही सिंग्स इन उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, बट ऑल्सो ही हैज संग अ सॉन्ग इन बंगाली. सो लाइक दैट्स अ फन फैक्ट जो कि बहुत कम लोगों को पता था, मुझे भी नहीं पता था. ऑब्वियसली व्हेन यू डू रिसर्च तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि क्या क्या चीज़ वी आर मिसिंग आउट. तो मेरे साथ भी यही हुआ कि हिंदी, उर्दू और पंजाबी का तो मुझे पता था कि उन्होंने इस लैंग्वेज में गाने गाए हैं, लेकिन उन्होंने बंगाली में भी गाना गाया है. इट इज़ वेरी यू नो क्यूरोसिटी किसी के अंदर बिल्ड होती है कि अच्छा कैसा है वो, कैसा होगा वो गाना. तो मेरे साथ साथ आप लोग भी जो है उस गाने को ज़रूर सर्च करेगा, सुनेगा और फिर उस पर भी हम टेक लेंगे कि अच्छा ऐसे जो है आतिफ ने बंगाली लैंग्वेज में गाना गाया है. अच्छा दे इज़ अनदर थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी. आतिफ और अली जफर की राइवलरी को बहुत शदीद समझा जाता है. लाइक कहते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पाकिस्तानीज, वन हु लाइक्स अली जफर एंड डज नॉट लाइक आतिफ, एंड दी अदर वन इज़ लाइक ऑब्वियसली हु लव्स आतिफ एंड डज नॉट लाइक अली जफर. तो लाइक दैट्स वियर्ड के उस लिहाज से कि यू कॉन्ट लाइक बोथ ऑफ देम, लोगों का ये कहना है. देर आर पीपल, उनके अपने ओपिनियंस होते हैं. ऑब्वियसली हम लोग उन ओपिनियंस को मैं केटर नहीं कर सकती उन ओपिनियंस को क्योंकि वो आपके अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन मुझे ज़रूर बताएं कि ये क्या ये चीज़ ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, क्या ये मिथ है जो मैंने बस सुनी है और यू नो मुझे निकाल देनी चाहिए अपने दिमाग से. खैर हम लोग आतिफ असलम को डिस्कस कर रहे थे. तो 2008 में उनको तमगा इम्तियाज भी मिला था, विच इज़ द फोर्थ हाइस्ट लाइक अवार्ड गिवन टू अ सिविलियन इन पाकिस्तान. तो मतलब कि वही बात है कि ही इज रियली यंग एंड ही इज़ अचीव्ड सो मच in such young age and in such early span of his singing career. Because आतिफ असलम को जैसे मैंने कहा कि उनको इतना टाइम नहीं हुआ आए हुए, ही स्टिल यंग और अपने कॉलेज लाइफ में ही स्टार्टेड सिंगिंग. और उस एरा में जब आप स्टार्ट करते हो सिंगिंग या उस एरा में जब आप ज्वाइन करते हो तो वो इट साउंड्स या फिर इट डजेंट सीम लाइक आप इतना आगे जाओगे, और अगर आप आगे चले भी जाते हो तो इट टेक्स टाइम टू अचीव सच अवार्ड्स. लेकिन उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज में जो है अपने लाइफ के उन्होंने ये बेसिकली अचीव कर लिया. और उसके अलावा हम इनके ऑब्वियसली और भी बात करेंगे उनको, लेकिन मैं एक और मज़े की बात बताऊं कि ही वाज अवार्डेड द दुबई वॉक ऑफ फेम स्टार, जो बेसिकली बेस्ट सिंगर इन पाकिस्तान का उनको एक फेम स्टार बेसिकली होता है दुबई में, तो वो उनको मिला. तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि हम लोगों को हमारा पता क्या एक्सपोजर पाकिस्तानीज का इशू है, हमारा एक्सपोजर जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान के हद तक या अपने होम ग्राउंड के हद तक होता है. वी डोंट नो कि such amazing things also exist outside of Pakistan, और हम लोग उनको उतना importance नहीं देते. And these things are way more important, और जब आपको actual वहाँ पर recognize किया जाता है then you realize कि these things are important, या these things are कहते हैं ना कि these things
really matter. They matter more than اگر آپ کو for example, obviously جیسا میں نے کہا کہ تمغہ امتیاز it's a huge honor اور یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے, we should appreciate that. لیکن جب آپ کو باہر کی دنیا میں جب آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے جس جہاں پہ کمپٹیشن پوری دنیا کا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان

में तो सिर्फ पाकिस्तानी इसका आपस में कंपटीशन होता है. तो लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 5 लोगों का कंपटीशन हो रहा है, तो आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें तो फिर मोर देन 5, लाइक यू कैन इमेजिन जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक 10 लोगों का कंपटीशन. तो ऑब्वियसली व्हेन यू विन इन 10 नंबर ऑफ पीपल तो इट्स बेटर या इट्स ह्यूजर या इट्स बिगर. तो खैर आतिफ असलम के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, अभी इस तरह करते हैं हम एक म्यूजिकल ब्रेक पे चलते हैं और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे और फिर हम लोग और डिटेल में आप लोगों से डिस्कशन करेंगे और आतिफ असलम को भी डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड.

वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में. और आज हम लोग जो है आतिफ असलम को डिस्कस कर रहे हैं. और आतिफ असलम को जैसा मैंने एक लाइक होता है ना बेसिक आप लोगों को बता दिया कि यू नो हु इज आतिफ असलम या व्हाट हैज ही डन इन हिज लाइफ या उनकी शदीद बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं वो क्या रही हैं. He is basically पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि वजीराबाद जो एक स्पेसिफिक प्लेस है इन पंजाब वहाँ से basically he's born over there and उन्होंने अपनी एजुकेशन वहीं पे हासिल की. और लाइक वहीं पे basically अपना होता ना वो जो क्या कहते हैं उसको इब्तदाई तालीम जो है. आई रिमेम्बर जब हमारे वो होते थे ना एसेज होते थे कि हम लोगों ने स्पेसिफिकली कायद आज़म पे मज़मून लिखना होता था 9 pages का, तो उसमें ऐसे अल्फाज यूज होते थे कि इब्तदाई तालीम. और समटाइम्स जब आप इस टाइप के वर्ड्स या फिर इस टाइप की चीज़ें आप लोग याद करते हो तो फिर यू मिस दैट टाइम अलॉट, क्योंकि अब ऑब्वियसली इतनी शदीद पढ़ाई नहीं होती. लाइक आई एम ऑल्सो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और इट्स माई लास्ट ईयर. और अब जो है बहुत ईजी सीन होता है, इट्स मोर प्रैक्टिकल और इस टाइप की चीज़ें होती हैं. लेकिन फिर भी वेन यू रिमेंबर दोज थिंग्स सो दे आर पीपल एक्चुअली, मुझे बल्कि आप लोगों का भी ओपिनियन इसमें मुझे अच्छा लगे अगर आप लोग बताएं. लोग दो तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं कि वो वाला टाइम अच्छा था, ये वाला टाइम बुरा है, वो वाली पढ़ाई अच्छी थी, ये वाली बुरी है. और एक होते हैं जो शुक्र अदा करते हैं कि वो मैट्रिक और इंटर के प्रेशर से निकल आए हैं और अब जो है वो इस पढ़ाई को इंजॉय कर रहे हैं या रिलैक्स हैं, इजी हैं इन दिस यूनिवर्सिटी लाइफ. तो आप लोग ज़रूर अपना ओपिनियन दें. मेरे ख्याल से आई इन्जॉय ये वाली पढ़ाई बेटर, बिकॉज दिस इज़ लाइक प्रैक्टिकल काम इसमें ज़्यादा होता है या फिर यूर एक्चुअली लर्निंग स्टफ. ऐसा नहीं है कि आप बस रट्टे लगा रहे हो और पास आउट हो रहे हो. लेकिन वो टाइम खूबसूरत था, वो टाइम खूबसूरत था, ये एजुकेशन खूबसूरत है. तो लाइक मैं बीच में कहीं पर स्टैंड करती हूँ, मैं कोई एक पोजिशन नहीं लेना पसंद करूँगी इसमें. हम लोग आतिफ असलम की बात करें तो आतिफ असलम के टेलीविजन करियर को अगर हम थोड़ा बहुत डिस्कस करें तो जैसा मैंने पहले कहा कि तो ऑब्वियसली उन्होंने फिल्म की है बोल, पाकिस्तानी फिल्म थी, उसमें ही एक्टेड. उसके अलावा एक ही ऑल्सो अपियर्ड एज अ टीम कैप्टन, बेसिकली पाकिस्तानी टीम कैप्टन फॉर अ सिंगिंग टैलेंट शो जो कि क्रॉस बॉर्डर होता था ये इंडिया और पाकिस्तान को मिलाने के लिए या फिर उनको एक सेम प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक शो करवाया जाता था जो कि दुबई में बेसिकली रिकॉर्ड होता था, वहीं से ब्रॉडकास्ट होता था. और ये शो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया था. और इसी शो से हमारे और बहुत बड़े और अच्छे सिंगर जो हैं नबील शौकत अली इसी कॉम्पिटिशन से निकल के आए थे और ही वॉन दैट. आई रिमेंबर यूज़ टू वॉच दैट शो और बड़ा मज़े का लगता था कि पूरी ऑडियंस के सामने यू नो देयर इज़ दिस कॉम्पिटिशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया हमारा टैलेंट का. और लाइक इट वॉज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, हम लोग जो हैं यहाँ पे बस हंसी मजाक वगैरह ये सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन इट वॉज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, समथिंग जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो. उसके अलावा हॉलीवुड की बात करें तो अच्छा, हर सिंगर या हर एक्टर के बारे में जब भी एक ये सेक्शन आता है ना हॉलीवुड, तो आई गेट वेरी एक्साइटेड कि अच्छा चलो वही बात है कि दीज पीपल हैव डन मोर देन वट वी थाट के दे कुड या दे हैव. आतिफ असलम के बारे में बात की जाए तो उन्होंने जो अपनी सेकेंड एल्बम रिकॉर्ड की थी दूरी के नाम से, उसमें गाने थे जो दो फिल्म्स में बेसिकली यूज़ किया गया था. एक उनका गाना था यकीन और एक एहसास. और फिर उनकी जो एक सिंगल आई थी आदत जो बहुत शदीद मशहूर गाना हुआ था. और उनकी पहली एल्बम जो पहले हमारा गाना भी चला था जल परी, उस एल्बम का बेसिकली इनका गाना था वो. और ये जो गाना था ये इनकी 2005 में एक फिल्म आई थी मन पुश के नाम से और उसमें जो है ये गाना फीचर हुआ था. उसके अलावा 2010 में स्पैनिश ब्यूटी जो है एक ये फिल्म आई थी जिसका हिंदी वर्जन भी आया था बाद में और मैक्सिकन वर्जन भी आया था, तो उसमें भी ये गाने जो हैं इनके यूज़ हुए थे. उसके अलावा ही सैंग टू सॉन्ग्स, एक गाना बोल के लब आज़ाद हैं और मुरी रज सुनो. ये एक द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो कि अली सेठी ने बेसिकली इस मूवी में अली सेठी ने भी फीचर किया है. उस फिल्म में भी इनके जो हैं ये दो गाने जो हैं साउंड ट्रैक्स जो हैं प्ले
ہوئے تھے, مطلب کہ ہمیں لگتا ہے کہ عاطف اسلم کو تو obviously we know کہ he has been singing in Bollywood for long time اور بہت عرصے سے ان کا کیریئر جو ہے وہاں پر بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے, لیکن the fact that ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہالی ووڈ میں بھی he has participated and not only participated بلکہ he has been appreciated, اور وہی گانے جو ہم لوگ سنے ہیں ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ایکچوئل میں اچھے گانے ہیں, انہوں نے وہ گلے گانے جو ہیں وہاں پر پرفارم بھی کیے ہیں. اس کے علاوہ عاطف اسلم کے ہم لوگ بالی ووڈ کی بات کریں تو obviously we all know کہ عادت سے ان کا شروع ہوا تھا کیریئر ایون ان انڈیا, اور اس وقت جو ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہی ہیڈ نو منی وین ہی ریکارڈڈ دس سانگ, اور وہاں پر جو ہیں ہی واز اونلی 17 years کے, مطلب کہ صرف 17 years کے تھے جب انہوں نے یہ گانا ریکارڈ کیا تھا. آئی مین لائک دیٹس ویری ینگ اینڈ دیٹس سم تھنگ وی شوڈ ایکچولی تھنک اباؤٹ اینڈ گیٹ انسپائرڈ. ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں, آپ لوگ اس پوائنٹ پہ تھوڑا سوچیں اور پھر ہم لوگ واپس آئیں گے اور پھر ہم لوگ اسی بات کو ڈسکس کریں گے کہ یو نو ایٹ دس ایج اینڈ ایٹ سچ پوزیشن یو ڈوئنگ سو گریٹ. سو اسٹے ٹیون ٹو FM 92.6.

वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया है एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में फातिमा अहमद को. हम लोग आतिफ असलम को डिस्कस कर रहे थे. आतिफ असलम के ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आतिफ असलम की, लेकिन एक और मजे की अचीवमेंट की है कि ये एक नेशन वाइड एक टैलेंट शो होता है पाकिस्तान में जिसमें बैंड्स को डिस्कवर किया जाता है. ये भी बेसिकली जज पैनल का हिस्सा थे आतिफ असलम एक उसके पहले सीजन का, जिसमें मीशा शफी, फवाद खान और शाही हसन जो है वो भी पैनल का हिस्सा थे. फिर उसके बाद आतिफ असलम की एक और बहुत खूबसूरत पहचान है, एक बहुत मज़े की एक रिकग्निशन है कि आतिफ असलम का बेसिकली जैसा एक स्टूडियो आता है जिसमें हम डिफरेंट पुराने गानों को रीन्यू करते हैं हर साल ये आता है, तो उसमें ताज दार हरम जो है वो आतिफ असलम ने बहुत खूबसूरती से उसको उन्होंने रीन्यू किया था. इसको आतिफ असलम ने ऑन 1 नवंबर 2017 रिलीज़ हुआ था और इनके पास ये एक ऑनर है इस चीज़ का कि ही क्रॉस्ड 100 million व्यूज ऑन यूट्यूब, बिकमिंग द फर्स्ट वीडियो ओरिजिन इन पाकिस्तान टू अचीव सच लैंडमार्क. मतलब कि देन अगेन दिस इज ह्यूज, दिस इज बियॉन्ड ह्यूज के 100 million व्यूज, दैट्स अ लॉट ऑफ व्यूज. आई कैंट इवन यू नो, मैं जीरोज भी इमेजिन नहीं कर सकती इस 100 million में कितने ज्यादा जीरोज हैं. और ही अचीव दैट. और ये बेसिकली कवाली सॉन्ग था जो कि ओरिजिनली साबरी ब्रदर्स जो हैं उन्होंने गाया था, उसके बाद अमजद साबरी ने भी इनको इसको परफॉर्म किया था. तो ये जो है बेसिकली 186 कंट्रीज के अंदर इसको देखा गया था ऑन यूट्यूब और फिर इट अचीव दिस अमेजिंग रिकॉर्ड जो कि ऑब्वियसली अब जो है वो या तो कोई तोड़ नहीं सकता, और अगर कोई तोड़ भी देगा ना तो हिस्ट्री में जो है आतिफ असलम का नाम लिखा जाएगा, बिकॉज ही वर्स the first one to achieve this amazing landmark. आतिफ असलम के बारे में बात की जाए तो जो एक बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, एक सिंगर हैं सज्जाद अली, जो कि देन अगेन ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स, वो कहते हैं कि यू कैन सी हाउ बिग आर्टिस्ट इवन इन इंडिया ट्राई टू कॉपी आतिफ्स वे ऑफ सिंगिंग ट्यून. और ये एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया है, देर आर सो मेनी सिंगर्स जो कि इंडिया में आई हैव हर्ड सॉन्ग, तो मुझे लगता है कि अच्छा ये आतिफ गा रहा है, लेकिन मुझे फिर बाद में पता चलता है कि आतिफ नहीं था, इट्स इज समबडी जो कि आतिफ को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है. तो ही सेज के वेयर टू पिक अप फ्रॉम, वेयर एंड वेन टू होल्ड एंड इवन रिलीज अ नोट. मतलब कि आतिफ को इतनी ग्रिप है अपनी आवाज के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर, अपनी बेसिकली जैसे मैंने शुरू में बताया कि उनकी अपनी एक टेक्निक है, उनको इतना खूबसूरती से होल्ड है उसको उन नोट्स के ऊपर, दैट ही नोस कि कहाँ पर मुझे उसको उठाना है, कहाँ पर मुझे रिलीज करना है, कहाँ पर मुझे कंट्रोल कर लेना है. मतलब कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो इस वक्त हमें लग रही है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक सिंगर को ही पता होता है कि ये कितनी बड़ी बात होती है. और ही सेज दैट नॉट दैट दे आर बैड सिंगर्स, दे कैन सिंग प्रिटी वेल, बट यू कैन सी व्हाई दे ट्राई टू सिंग इन आतिफ एक्सप्रेशन एंड टोन. ये बहुत बड़ी बात कर दी सज्जाद अली ने. उन्होंने कहा कि वो जो सिंगर्स हैं वो बुरे सिंगर्स नहीं, ऑब्वियसली दे आर गुड सिंगर्स, दैट इज व्हाई दे आर सर्वाइविंग इन दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री. लेकिन इसमें ये कहा कि आतिफ असलम ने ये कहा कि सॉरी आतिफ असलम के बारे में ये कहा गया कि बेसिकली वो उनकी अपनी इतनी पहचान है या उनकी एक इतने एक्सप्रेशन या टोन को इतने खूबसूरत समझा जाता है कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और लोग जो हैं वो आतिफ असलम की आवाज़ बनना चाहते हैं, या फिर वो अपनी पहचान जो है वो उन टोन्स या उस अदायगी से बेसिकली जो है वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं. तो बेसिकली वही बात है कि हम एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में उन्हीं को डिस्कस करते हैं जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, एंड डेफिनेटली आतिफ असलम इज़ वन ऑफ देम. अब इस तरह करते हैं, हम लोग म्यूजिकल ब्रेक पर चलते हैं, आतिफ असलम की एक और खूबसूरत आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, और उसके बाद फिर वी विल बी राइट बैक विद मोर अबाउट आतिफ असलम एंड मोर अबाउट FM 92.6.

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: लोगे।
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें।
2: खबरदार, छूना मना है।
3: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। PT

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया।
3: इन सदाये लाहौर, इन सदाये UCPS। लुत्फ़ान गोश बदहीद FM 92.6 जहाने UCP।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: टिकी के सुर और तान, सुर और तान, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

के सुरोरतान सुरोरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस,

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया।
3: इन सदाये लाहौर है, इन सदाये UCP है। लुत्फ़ान गुश बदहीद FM 92.6 जहाने UCP।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर

दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर एसएमएस करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या एसएमएस के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। बीटी

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।